0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपको बताते हैं।

अब से थोड़ी देर में यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात कोमल भारती के साथ, और 7:05 पर रेणु भट्ट आपके लिए लेकर आएंगी गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर। ये खास कार्यक्रम आप सुनेंगे

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुबह 8 बजे भी होगा, लेकिन ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कोमल भारती के साथ। सुबह 9 बजे रेणु भट्ट के साथ आप सुनेंगे

श्रोताओं, सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का, मैचलेस म्यूजिकार। ईशा गोयल के साथ ही कार्यक्रम सुनेंगे आप। और 11:05 पर बॉलीवुड ट्रेल्स में आज आपकी साथी होंगी रश्मि गुप्ता। बॉलीवुड अपडेट्स और गानों के साथ ये खास कार्यक्रम आपके लिए

प्ले इट कूल। जी हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक का एक कार्यक्रम आप सुनेंगे ईशा गोयल के साथ 12:05 पर, और दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: एनिमल तो हाईली इंडेंजर्ड आ रेयर भी आसे और यू नपचाइली चलती तो दुनिया पर हटा जाब यू मरा दी सिकुलर यू हंडिंग कर सिकुलर पानीशमेंट बस डर आसे यू लगा केस कर सिकुलर नन कम्पाउंडेबल आसे और नन भेलेबल आसे और पानीशमेंट तो 7 years तक चल जाब और फाइन भी 10,000 लो लगा यू कानून पर कह आसे और शिल टू शिल थ्री ना अलग अलग चारो यू पपुलेशन अबंडेंस बेसि थका नाथा कि इम्पोर्टेंस आसे यू हिसाब पर यू ते एनिमल चलि प्लांट चलि किसीम किसीम तो यू राखी दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर कह आसे जानवर गान तो नेशनल प्रॉपर्टी आसे तो यू हंडिंग कर मरा दी सिकुल पानीशिबल आसे हल नागालेन्ड लगा सिनारियो सैसे बोली यू अलग डिपेटेबल इश्यू आसे कैली बोले इम्प्लीमेंटेशन कारण झमला आसे आम गान फरफालस खान हंडिंग करना यू कहना तक फेमिली पालेगना नागा थी आम गान सोशल और कल्चरल सेटिंग हंडिंग बस क्लोजलि लिंक आसे तो यू कारण हंडिंग बंद कर बेसि दिगदारी पा और सोसाइटी पर खेला कानून हम भी एक्सेप्ट करा ना बोल यू इम्प्लीमेंट करें बेसि दिगदारी पा हम भी अमेगा ला फर फादर्स का ला जाबना इतना जाबना बेसि अलग हो जाए अमेगा हंडिंग चल रही बोल वाइल्ड लाइफ कारण स्पेस ना तक आस्ते आस्ते सब हर जाओ वाइल्ड लाइफ नाथा करो अमेगा कारण बेसि चुकुम हमले आसे ये अमेगा कल्चर जीत हंडिंग तक आस्ते आस्ते ये हंडिंग हर लगे
1: इन नागालैंड फॉरेस्ट एंड देयर वाइल्ड लाइफ आर डीपली कनेक्टेड टू देयर कल्चर ट्रेडिशंस एंड लाइवलीहुड्स ह्यूमंस हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट And because we are the ones who cause many of these problems, we also have a responsibility to fix them. We need to act as good caretakers of the earth, making sure that future generations also get to enjoy a world full of diverse and thriving wild creatures.
0: Amega Nagalindi wildlife sanctuaries are national parks. Laulup Koidibo Chakala Nam Kisim Kisimti Reserve Forest PT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और नेशनल पार्क भी थी यू सब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क लगा अम्ब्रेलारे आब और यू रिजर्व फॉरेस्ट तो क्या बोलो यू राखिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉरेस्ट बचाईना रखने यू रिजर्व फॉरेस्ट राखी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी फॉरेस्ट तो प्रोटेक्ट कर वाइल्ड लाइफ यू बचाव एनिमल्स का बचाव यू इम्पोर्टेंस तो थी थी नेशनल पार्क की तो फॉरेस्ट भी बचाव वाइल्ड एनिमल्स भी बचाव और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू इकोसिस्टम बचाव कारण यू नेशनल पार्क राखे अमेगा नागालेन्डी इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीन और नेशनल पार्क एक यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो फकीम केफ्री आसे सिंगफान मन पलिपाजी कोयमा और नेशनल पार्क एक इंटांगी नेशनल पार्क आसे तो पेरेन डिस्ट्रिक्ट आसे नागालेन्डी जू एक नागालेन्ड जुलजिकल पार्क नई रंगा पार्क जुलजिकल पार्क इनका कह तो जू रू सेंट्रल जू अथॉरिटी तक गाइडलाइन सुपरविजन दिए तो मेनेज कर और इतना चाहिए 47 स्पीशीज बर्ड्स मामल्स और रेप्टाइल्स सब मिला ना इतना जुरी आसे जू एक राखी तो कि कारण राखी कह रिजन बेसि हम भी मेनलि टू रिजन आज एक पब्लिक की फर्स्ट हेण्ड इनफर्मेशन दी आम गान किताब टीवी पाए टीवी टीवी चाय बोले भी आम गान रियल एनिमल्स का नागे नाथे यू टिके बोले चांस दी बोले यू राखे और जंगल दी हम भी पहाड़ दी हम भी वाइल्ड लाइफ का जुकुम भी हो इंजर्ड भी होगी और के बार बीमार भी होगी यू वन लो नानी ना रिहेबिलिटेशन कर जरूर राखे
1: A healthy ecosystem provides us with vital services

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की।

0: जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू

0: चांद भैरव फूलों और झानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कानू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाश

0: हेलो
1: जय माता जी।
0: जी, बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला।
0: ओके, राजस्थान से
1: जी पूरन वर्मा।
0: जी। बोलिए, आज कौन सा गीत सुनने के लिए सोच रहा
1: जी
0: है
1: मैडम,
0: आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा मिट्टी।
0: मिट्टी।
1: हाँ जी
0: मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ एक ही गीत है मेरे पास, वो नो, ये तो मिट्टी में सोना, यही है, मिट्टी तो नहीं है।
1: अच्छा, तो फिर फिल्म का नाम रहेगा घर वाली और बाहर वाली।
0: घर वाली और भर वाली। घर वाली भर वाली में कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: इसमें ये गाना है तारा रा रा रा रा, ऐसा कुछ गाना है।
0: ओके, और किसी का नाम लेना चाहूंगी?
1: सबसे पहले आप हैं
0: जी, बोले, थैंक यू।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी बाई है, अमल बिमल और रमेश पात्र जी है और अंजलि है और जितने भी लाइव कॉलर आकाशवाणी कोई माँ के चाहने वालों को सुनाना चाहता हूँ मैडम ये गाना।
0: ओके, ठीक है, पुरन वर्मा जी, आपका गीत सुनिए और एन्जॉय कीजिए, और कॉल के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम। उसी वालुवार भी है।
0: ओके, वेलकम। होनी थका सब बिल्लाक प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत होनी बो कुमार सानू आरो अनुराधा श्री राम लगा वास्तव फिल्म से घर वाली भार वाली आरो इटू गीत होनी बोले मन हुई गिना कॉल कुरी गिना पसंद कुरी से राजस्थान पर पुरन वर्मा आरो तार ब्रतार लगा किसुमन दोस्त खान के डेडिकेट कुरी दी गिना से किंतु आमी खान सब एक साथ होनी गिना एन्जॉय कुरा हबो।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, बोले आपका शुभ नाम।
1: मेरा नाम है राकेश, मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है, इस वक्त जो है आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: बहुत खुशी की बात है।
1: जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका प्रोग्राम सुनने का बड़ा शौक चला है, तो आपके प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं ट्रेवल ब्रांड के, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम जाता है आपकी तरह कोई कोई माह से, क्योंकि ऑल इंडिया के जो है श्रोता जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलिए, आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: आज मुझे बेवफा सनम मूवी का गाना सुनना है।
0: बेवफा सनम?
1: जी, अगर देखो अगर है आपके पास
0: है बेवफा सनम में कौन सा गीत सुनना है?
1: अगर आपके पास उसमें एक गाना मिलेगा, आती है रात ओढ़े हुए।
0: ओके, बेवफा सनम में अच्छा सिला दिया तूने,
1: जी
0: ओ दिल तोड़ के हंसती, जिंदगी में तो सभी प्यार किया, ये धोखे प्यार की धोखे, जिंदगी बस साजना और तेली गली विचू लगेगा, वही है
1: बस वही है। तो ये गाना सुना दिए, ये धोखे प्यार के धोखे,
0: कौन सा?
1: ये धोखे,
0: ये धोखे। ओके ओके, और किसी को डेडिकेट करना है?
1: सबसे पहले तो ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा।
0: ओके थैंक यू।

0: पूरन परमार राजस्थान जयपुर से, मान जिला चंडेर भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति और अविनाश तेली, रुकुमिला मिथा और अमल बसमाचार्य हैं, विमल बसमाचार्य हैं, तमाम सुनने वाले श्रोता सभी के लिए गाना रेडी कीजिएगा।
1: ओके ठीक है राकेश जी, आपने कॉल लगाया और आपका गीत भी है आज तो दोबारा नहीं दौड़ना पड़ता है, इसीलिए आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए।
0: जी जी धन्यवाद।
1: ओके वेलकम। Huni thaka sabbilak huni bo sonu nigam laga vaste bevafa sanam fremot arai to get to huni bole mono igina pasan kurise shimla pra rakesh aro tar pra fm track pen la tar laka kisu man sati bilak jiman jon laga nam loise takhan ke dedicate kuri digina se to hunia suru hobo bevafa sanam fremki kit.

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: कवि कौन को आसे
1: दीदी? मैं ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: जी बोलिए, कैसे हैं?
1: अच्छे हैं दीदी, बढ़िया है। और आपका कार्यक्रम आज हम डीडीएच के माध्यम से सुन रहे हैं।
0: जी बहुत खुश की बात है
1: जी। और दीदी फिल्म का नाम हैगा अंदाज है,
0: अंदाज अपना अपना।
1: जी
0: देखता हूँ, अगर मेरे पास है तो मैं जरूर बजा दूंगी। अंदाज अपना अपना, बहुत बहुत खेत है मेरे पास नहीं है।
1: तो दीदी तो, आप हैं, हम हैं राही प्यार के हैं, हम हैं राही प्यार के,
0: हम हैं राही।
1: जी
0: देखता हूँ, हम हैं राही। ओके, हम है राही प्यार के तो नहीं, हम है राही कार के, यही है।
1: जी दीदी, हाँ इसमें से एक गीत है घूंघट की आड़ से दिलवर का।
0: नहीं यही है, हम है राही कार के, प्यार के नहीं, कार के।
1: अरे नहीं दीदी ये नहीं है, फिर आप सुना दीजिए दीदी, उसका सुना दीजिए, कृष्ण कन्हैया है।
0: कृष्ण कन्हैया शायद ये भी नहीं है।
1: और दीदी फिर बागवान है, बागवान,
0: बागवान तो है
1: दीदी, उसमें सुना दीजिए, पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ।
0: कौन सा?
1: पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ।
0: ओके, बागवान में देखता हूँ, बागवान। ओके, और बागवान नहीं है, बागबान है।
1: जी आपकी पसंद का कोई सा गीत सुना दीजिए।
0: मेरा पसंद के तो बहुत है, आपने कॉल किया है, आपका पसंद होना चाहिए।
1: जी दीदी, तो बस बलमा फिल्म का, जीने की तमन्ना हो तुम मेरी जरूरत हो, बलमा फिल्म का नाम है।
0: बलमा साइट ये भी नहीं है ना क्या?
1: तो दीदी इंग्लिश बाबू देसी मैम का दीवाना मैं तेरा दीवाना,
0: वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, जो नहीं है वही मांग रहा है अपने।
1: तुम सा नहीं देखा फिल्म होगी, तुम सा नहीं देखा,
0: तुम सा नहीं देखा। ओके, तुम सा नहीं देखा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तुम सा नहीं देखा है। कौन सा?
1: जी भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, मुझे दर्द में रसवाई में तुम याद आते हो।
0: ओके, मैं बोल देती हूँ, गीत का बोल ये है, आई हूँ दूर से, चुपने वाले देखो कसम से, जवानियाँ ये मस्त, और सर पर टोपी, और तुम सा नहीं देखा।
1: पहला वाला सुना दीजिए, पहले वाला था,
0: आए हैं दूर से,
1: आए हैं दूर से मिलने हजूर से, ये वाला सुना
0: दीजिए। ओके ठीक है, और बहुत टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं है,
1: बोले जाते हैं दीदी, आपके पास मिला नहीं इसलिए।
0: हाँ कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभार, हो जाता है, हो जाता है।
1: हमारे दोस्तों को याद करना चाहेंगे पहले तो, दीवा लोहट जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, अमल भस्मतारी, विमल भस्मतारी हैं, अंजलि भस्मतारी हैं, रमेश पात्रे जी हैं, और धनुश्री बिटिया हैं महाराष्ट्र से, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और जो भाईकान मुंडा जी हैं, सभी दोस्तों को डेलीकेट रहेगा, जिनका नाम मैं भूल गया, अगली बार लूंगा, रमेश प्रजापति जी हैं।
0: ओके ठीक है, भगवान सिंह वर्मा जी,

0: ना आपको माफी चाहूंगी क्योंकि आपने जितना भी मांग किया है वो मेरे पास नहीं था। फिर भी जो आखिर में जो मांगा है वो है, मैं जरूर बजा दूंगी। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। और
1: धन्यवाद दीदी,
0: जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: होनी ढगा सब बिला खुनी बो आशा भोसले और मोहम्मद रफी लगा वास्ते फिल्म आसे तुमसा नहीं देखा फिल्म की गीत। और यू गीत तो पसंद कर মধ্য প্রদেশ ভগবান সিং পরমার আর তারপর তার লাগা এফ এম ট্রাগপনলা দোষ খানকে ডেডিকেট করে দিয়ে কিনা আছে। তো শুনব আর এনজয় করা হব তুমসা নাহি দেখা ফিল্ম কি গীত।

0: मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: हेलो
2: हेलो
1: मैम नमस्कार।
2: हेलो
1: हेलो
2: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
2: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
1: प्रजापति
2: जी
1: बोले, कैसे हैं?
2: बस स्वस्थ है, मस्त है, गर्मी के आनंद ले रहे हैं, पानी के बादल आ रहे हैं तो जो पानी गिर जाए तो बढ़िया, थोड़ा ठंडक हो जाएगी
1: जी। आजकल तो गर्म का मौसम है और बारिश का मौसम भी है
2: जी।
1: तो बोलिए आज कौन सा गीत सुनना है आपको?
2: जीने की राह है।
1: जीने की राह, जीने की राह नहीं है, बहुत बहुत खेत है, ये नहीं है।
2: आवाज
1: आवाज आवाज देखता हूँ, आवाज भी नहीं है ना, क्या
2: सुहाग?
1: सुहाग हो सकता है, सुहाग सुहाग सुहाग में सिर्फ एक ही गीत है, मोहम्मद रफी, आशा और शैलेंद्र सिंह का आवाज में, ए यार सुन। ओके, सिर्फ एक ही है। ओके, किसी का नाम लेना चाहूंगी आपको?
2: जी जी जी, भगवान सिंह, सबसे पहले तो आपको
1: ओके थैंक यू।
2: भगवान सिंह परवार, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मंगलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया, धर्म सिंह है दिल्ली से, लोकेंद्र वर्मा जी है उज्जैन से, आशुतोष जी, संगीता जी, पूर्णमा जी विजयपुरम से, पूनम जी कानपुर से, अविनाश जी, राकेश जी शिमला से, शिव विदिशा से, ओ विमल भस्माकारी, अमल भस्माकारी गोल्डी, और अमर सिंह साहू, रमेश पात्रे, और नागल रक्षु बिल्ले मेहता, तनुश्री और तनुश्री बिटिया।
1: ओके ठीक है, रमेश जी आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए और कॉल करने के लिए थैंक यू।
2: जी जी धन्यवाद।
1: মোহাম্মদ রাফি, আশা ভোসলে আর শৈলেন্দ্র সিং লগা বাস্তে ফিল্ম আছে সুহাগ, আর এই গীতকে পছন্দ করেছে মধ্যপ্রদেশ রমেশ প্রজাপতি, আর তারপর এফ এম ট্রাকুপেন্দে যান তার দোষ বানাই রাখি কিনা আছে, তার সবকে নাম লই কিনা ডেডিকেট করে দিয়েছে, তো শুনে শুরু হব সুহাগ ফিল্মত।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नगर जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: जी,
0: उज्जैन से
1: जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से।
0: ओके, बोले कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: यहाँ पे भी। और आज कौन सा गीत सुनना है?
1: फिल्म का नाम है तुम मेरे हो।
0: तुम मेरे हो, अगर ये नहीं है तो?
1: ये नहीं है तो फिर मुझसे शादी करोगी, फिल्म का लाल दुपट्टा।
0: मुझसे शादी करोगे?
1: जी
0: ओके, लाल दुपट्टा
1: चलेगा, तुम मेरे हो फिल्म का।
0: लाल दुपट्टा सुनना है आपको?
1: नहीं, तुम मेरे हो फिल्म।
0: तुम मेरे हो
1: जी,
0: तुम मेरे हो, ऐसे तो नहीं है। अनदेखे अनजानी जाने दिल में मुझसे शादी करोगी, और सनवाली सी एक लड़की, और वही है।
1: आमिर खान की, आमिर खान की पुरानी फिल्म
0: है
1: ये। फिर ये सुनवा दीजिएगा आप।
0: कौन सा वाला?
1: ये राजपट्टा वाला।
0: आपका आवाज नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा गीत बोला?
1: ये मुझसे शादी करोगी फिल्म का लाल दुपट्टा।
0: लाल दुपट्टा,
1: हाँ जी।
0: ओके ठीक है, और नाम लेना है तो जल्दी से ले लो क्योंकि समय जा
1: जी
0: रहा है।
1: भगवान सिंह परमार, केसर सिंह राजपूत, लोकेंद्र वर्मा, आशुतोष अमीना, संगीता जी, सुनील झा भोपाल से, रमेश टेलर भोपाल से, और आपके लिए रहेगा, और कौन सुन रहे हैं उन सभी के लिए।
0: ओके ठीक है,
1: और एक बात सुनिए, जिनका कॉल नहीं लगा ना उनके भी लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके ठीक है, आपका गीत सुने और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया
1: जी। थैंक यू,
0: वेलकम। होने ढगा सब बिलक प्रोग्राम से एसडीडीएस मुझसे शादी करोगी फिल्म की गीत गए उदित नारायण और अलका याग्निक और यू गीत टू पसंद करे उज्जैन परा प्रेम सिंह सिसोदिया और तार लगा किसुमान साथीबिल डेडिकेट कर दिए कि आम सब एक साथ शुनी कि एन्जय करा हम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, और आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर एक बार फिर से रेनबो हेल्पलाइन लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त RJ रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, अभी चल रहे हैं CUET के एडमिशन्स की तैयारी, हो गई है, CUET का रिजल्ट आ चुका है, और साथ साथ बहुत सारे ऐसी क्वेरीज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के मन में है। वो चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BHU में, JNU में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में उन्हें एडमिशन मिल पाए, लेकिन CUET का पेपर देने के बाद भी थोड़ी सी क्वेरीज हैं, थोड़ा डर है, कुछ ऐसे सवाल हैं मन में जिनका जवाब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हम आए हैं आपके लिए, आपकी इन्हीं क्वेरीज का सॉल्यूशन लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, कॉमर्स डिपार्टमेंट, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज और इवनिंग कॉलेज से हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो डॉक्टर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू, एंड हमारे सारे FM रेनबो के दोस्तों को मेरा नमस्कार। एंड आज CUET और CSSS सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी CUET का रिजल्ट निकल चुका है
1: जी,
2: एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे आज।
1: जी, तो सर ने जैसा कि बताया कि CUET के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो यदि आपका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा डाउट है जो आप चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, तो आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ इस प्रोग्राम में। और हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप डायरेक्ट फ़ोन करके स्टूडियो में आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1084।

0: है।
1: जी हाँ बिल्कुल, कुड़ियों का नचने का समय आ गया है, लेकिन साथ साथ पढ़ाई करने का भी वक्त आ गया है, क्योंकि CUET एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और साथ साथ आ गया है रिज़ल्ट। और बहुत से हमारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन उन्हें मिल जाए। यदि कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग से, वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि CUET 2026 का रिजल्ट जैसे कि आ चुका है, तो अब एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा?
2: कंचन जी, रिजल्ट 23rd को आ चुका है CUET का, और हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने वेबसाइट्स हैं जो कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम्स के डेट नोटिफाई करते हैं। एट प्रेजेंट अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS सिस्टम है वो ओपन हो चुका है बच्चों के लिए, और दे नीड टू रजिस्टर ऑन दैट। ये पूरा प्रोसेस है जो एक तीन फेजों में चलता है, जो कि फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट फेज होता है वो बेसिकली अप्लाई करना होता है DU के। अभी बेसिकली हम लोग आज DU पे बात करेंगे,
1: जी
2: और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी यदि बच्चे कोई क्वेरी लेकर के आते हैं तो उन पे भी हम बात कर सकते हैं।
1: ओके
2: सो DU का फेज 1 स्टार्ट हो चुका है, जो कि अप्लाई करना है बच्चों को, रजिस्टर करना है। जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट्स पे जाकर के www.admission.eod.ac.in पे जाना है, जहाँ पे उनको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा।
1: जी
2: जब वो न्यू लिंक को क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली CUET का जो उनका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है एंड मोबाइल नंबर है, वो चीज़ उनसे मांगा जाएगा, और उस मोबाइल नंबर या ईमेल पे उनके OTP आएंगे जिसके थ्रू उनको वेरीफाई करना है। एंड आफ्टर दैट वेरिफिकेशन उनके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होंगे जो इंटीग्रेट हो जाते हैं अपने आप से, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या फिर नेम है, कैटेगरी है,
1: जी
2: कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जो ऑलरेडी उनके CUET के एप्लीकेशन से DU के रजिस्ट्रेशन से इंटीग्रेट हो जाएगा डाटा,
1: जी
2: और वो डाटा है जो चेंज नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद फिर है जो हमारा उसमें फेज 1 में बहुत सारे एप्लीकेशंस के कॉलम्स है जो कि उनको फिलअप करना है, लाइक पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, एकेडमिक्स के डिटेल्स डालने हैं, कोटाज यदि उनका कोई है, स्पोर्ट्स कोटा है, कैटेगरी का कोटा है, ECA का कोटा है, या फिर कोई और भी कोटा है, बहुत सारे कोटाज हैं जो कि ऑलरेडी बच्चे यदि इंफॉर्मेशन बुलेटिन DU का देखेंगे तो उनमें उनको मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग है जो उनको वो सारा अपलोड करना होता है। और अपलोड करने के बाद है जो बेसिकली फिर वो थर्ड फेज में, फेज 2 में उनको एक और चीज होगा जो कि प्रेफरेंस उनको प्रोग्राम एंड कॉलेज का करना होगा, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, और एक गलती से फिर वो उन बहुत लाइफ में रिपेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे खास करके जब कॉलेज प्रेफरेंस या कोर्स प्रेफरेंस चूज कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करें,
1: जी
2: और
1: जी
2: लोगों से कंसल्ट करके करें, अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से,
1: जी
2: या जो भी उनको लगता है उनके थ्रू वो कंसल्ट करें, और उसके थ्रू ही वो प्रेफरेंस करें। एंड लास्ट में है जो एलोकेशन प्रोसेस होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरफ से होता है, और फिर वो एडमिशन प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लेंगे उसके अकॉर्डिंगली वी विल बी डिस्कशिंग।
1: जी, तो हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं, और जो अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए भी बता दूं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है CUET 2026 जिसका रिजल्ट आ चुका है। यदि आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, एडमिशन से जुड़ा हुआ, सीट एलोकेशन से जुड़ा हुआ, या कॉलेज सेलेक्शन से जुड़ा हुआ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रजनीकांत वर्मा, जो आपको CUET से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्टूडियो में हमें फोन कर सकते हैं 011-2342-1080 और 2342-1084।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं CUET एडमिशंस 2026 की काउंसलिंग, सीट एलोकेशन एंड कॉलेज सिलेक्शन की। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा, कॉमर्स डिपार्टमेंट, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली। तो सर, अगला मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या CUET का रिजल्ट आने के बाद सीधे एडमिशंस मिल जाते हैं या उसके बाद भी कई स्टेप होते हैं प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए?
1: बहुत बढ़िया क्वेश्चन रेज किया आपने रश्मि जी। बेसिकली CUET जो 2026 का एंट्रेंस है
0: जी,
1: वो किसी भी बच्चे को एडमिशन सिक्योर्ड नहीं करता है। दे हैव ओनली अपीयर्ड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन लेने के लिए उस यूनिवर्सिटीज में उनको प्रॉपरली रजिस्टर करना होगा, अप्लाई करना होगा, एंड देन ओनली दे कैन गेट द एडमिशन।
0: ओके।
1: और यदि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमारे पास 76 कोर्सेज हैं
0: जी,
1: और ऑलमोस्ट 100 BA के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के कोर्सेज हैं और 67 एफिलिएटेड कॉलेज हैं और 71,600 सीट्स हैं ऑल ओवर DU अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे
0: जी।
1: तो बच्चों को सबसे पहले तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट्स पे जा करके उनको रजिस्टर करना है और उसके बाद उनको पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है, देन ओनली दे कैन गेट द एडमिशन। बच्चे बहुत सारे पैनिक्ड होते हैं कि हमारे स्कोर्स लो हैं, पता नहीं हमें एडमिशन्स नहीं मिलेगा या मिलेगा, बट रेस्ट एश्योर्ड कि एडमिशन्स यदि बहुत अच्छे नहीं भी हैं मार्क्स आपके, तो हो सकता है कि आपको चॉइस के कॉलेजेज नहीं मिले, चॉइस के कोर्सेज ना मिले, बट एडमिशंस कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है हमारे स्टूडेंट्स को
0: जी। सर, एक सवाल मुझ तक पहुंचा है, इन्होंने बोला है कि कई स्टूडेंट्स का री इवेल्युएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या भरें?
1: उनको वेट करना है, अभी तो एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, उन्होंने अभी तक उन्होंने क्लोजिंग का भी डेट नहीं डाला है
0: जी।
1: और इवन बच्चे जो कंपार्टमेंट्स वाले होते हैं उनके भी रिजल्ट्स बहुत बाद में आते हैं, उसमें भी वो मिड एडमिशन का एक प्रोसेस है।
0: ओके।
1: तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आई थिंक टाइम टू टाइम कितने बार यूनिवर्सिटी अपडेट देती है अपने वेबसाइट पे, उसको देखते रहें और यदि वहाँ से जैसे ही उनका लिंक ओपन होता है या कोई ऐसी नोटिफिकेशन आता है तो वो बाद में है जो उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको प्रॉपर अपडेट कर सकते हैं अपने 12th के मार्कशीट को
0: जी। सर, ये है पैंथर तोमर, किशनगंज दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा था। इनका एक सवाल और भी है, ये जानना चाहते हैं कि DU ने क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स मांगे हैं, अगर सिर्फ मार्कशीट है तो क्या करें?
1: मार्कशीट ही बेसिकली उनको अपलोड करना है, बच्चे जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो उसमें एकेडमिक्स में जब जाएंगे तो उनको 10th एंड 12th के डिटेल्स उनको अपलोड करने हैं, लाइक स्कूल नेम्स प्राइवेट है या किस टाइप्स के स्कूल्स हैं, लोकेशंस क्या हैं, स्कूल्स का नेम क्या है, और साथ में उसमें सब्जेक्ट के ऑप्शंस होते हैं, वो सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, तो जो भी बच्चा अपीयर हुआ है क्लास 12th में उसके मार्कशीट अभी उनको अपलोड करने हैं, एंड दे शुड कीप द डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्कैन कॉपी रेडी, क्योंकि उनको उसको अपलोड करना है। तो आई थिंक उससे काम हो जाएगा, मार्कशीट ही चाहिए और डिजी लॉकर से भी वो एक्सेस हो जाते हैं जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जाता है। तो
0: सर, हमारे पहले कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, इनका एक सवाल है, जानते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्कार मैम
0: जी, पूछिए आपका सवाल, पूछिए और अपना नाम बताइए पहले।
2: सक्षम शर्मा बोल रहा हूँ
0: जी। सक्षम जी बताइए, कहाँ से आप फोन कर रहे हैं हमें?
2: मैं खेकड़ा बागपत से बोल रहा हूँ
0: जी,
2: बताइए। यूपी से
0: जी जी।
2: हाँ मैम, मैंने जो है 12th पास की है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर साइंस और योगा के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट
0: जी।
2: तो मैं जो है मैथ सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहा हूँ, तो थर्ड सब्जेक्ट में मैं कोई मानविकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ले सकता हूँ क्या?
0: जी सर।
1: सक्षम जी, आप ले सकते हैं। बेसिकली जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें एक लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना होता है, तो आई होप कि आपने CUET में अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में जरूर अपीयर हुए होंगे, क्योंकि उनके मार्क्स के बेसिस पे ही आप अप्लाई कर सकते हो DU में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो। और
2: CUET अप्लाई करते टाइम तो केवल जो 12th के सब्जेक्ट थे वही मांगे थे और कोई सब्जेक्ट उन्होंने नहीं मांगा?
1: हाँ वही कह रहा हूँ, आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में ही अपेयर होना था, बट आप दूसरे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। आप उसको अप्लाई कर दीजिए, जब अभी कोर्सेज चॉइस के लिए और कॉलेज चॉइस के लिए प्रेफरेंस मांगा जाएगा उसमें आप अप्लाई कर दीजिए, और ड्यू का यदि एल्गोरिथम परमिट करता है और उसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग कोई कॉलेज आपको एलोकेट होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ई मेल।
2: जैसे सर NET 23 में बोला था कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट इधर उधर का कोई भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में ये बात पूछ रहा था आपने।
1: हाँ मैंने यही कहा कि आपने जो कह रहे हो कि फिजिक्स कंप्यूटर साइंस मैथ्स का दिया, तो पेपर आपने वही दे रखा है, उसमें जो आपके स्कोर्स आए होंगे CUET का वो उसको आपको पूरा अपलोड करना है सारा, और उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं, बट आप चॉइस जब फिलअप करेंगे तो कोर्सेज और कॉलेज का, तो उसमें आपको कोर्स चॉइस में वो सारे सब्जेक्ट्स देने हैं जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप फुलफिल करते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यदि आप वो फुलफिल करते हैं तो आपको DU एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपके वो उसमें सीट एलोकेशन आ जाएगा
0: जी। तो आई थिंक सक्षम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अच्छा सर अगला मेरा जो सवाल है मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ये सीट एलोकेशन होता है ये किस तरह से होता है और किन फैक्टर्स के आधार पर किसी भी स्टूडेंट को कॉलेज और कोर्स अलॉट होता है?
1: सीट एलोकेशन रश्मि जी एक एल्गोरिथम के थ्रू होता है। सबसे पहले तो बच्चे अपने कोर्स को चूज करेंगे एंड कॉलेज को चूज करेंगे, उसमें बच्चों को एक मैं समझदारी की बात ये करूंगा कि यदि आपके बहुत अच्छे CUET में मार्क्स है तो आप लिमिटेड प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट यदि आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम प्रेफरेंसेस इवन 200 तक भी देना पड़े तो दे दें।
0: ओके
1: क्योंकि एडमिशन तभी सिक्योर्ड हो सकता है जब आपने प्रेफरेंस फिलअप किया, यदि आपने प्रेफरेंस नहीं दिया है तो उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
0: जी।
1: दूसरी चीज की जब आप प्रेफरेंस भरते हैं तो दो फैक्टर्स है, एक तो कॉलेज का है और एक कोर्स का है
0: जी।
1: तो बच्चों को बहुत क्लियर होने की जरूरत है कि बच्चा कोर्स के प्रेफरेंस पे जाना चाहता है या कॉलेज, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे वो भी होते हैं कि नहीं मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि ऐसा है तो उनको उस कॉलेज को देखना है और उस कॉलेज में जितने भी कोर्सेस हैं और उसमें वो इंटरेस्टेड है
0: जी।
1: तो उस कॉलेज के उस सारे कोर्सेस को रैंकिंग डालें।
0: हाँ।
1: वैसे ही सेकंड कॉलेज थर्ड कॉलेज कॉलेज का प्रेफरेंस है, सपोज करो उन्होंने हिंदू से शुरू किया हंसराज से शुरू किया KMC, तो उनमें जितने कोर्सेस हैं उसको वो प्रेफरेंसेस में डाल दें। यदि बच्चा कोर्स के लिए बहुत फंसी है कि नहीं मुझे तो यही कोर्स करना है कॉलेज मेरे को मैटर नहीं करता है, तो वो फिर वो कोर्स देखे कि उस कोर्स में सबसे बेस्ट कॉलेज क्या है और उस कॉलेज के अकॉर्डिंग कर ले। और दोनों चीजें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि या तो कोर्स पे जाए या कॉलेज पे जाए। कोर्स पे जाता है तो एक कोर्स से सपोज करो उसने बीकॉम ऑनर्स लिया तो बीकॉम ऑनर्स के अकॉर्डिंग वो कॉलेज को रैंकिंग देना शुरू करते हैं।
0: जी जी जी।
1: दूसरे कोर्स में सपोज उसने बीकॉम किया तो उसकी रैंकिंग अलग होगी क्योंकि हर कॉलेज में बीकॉम नहीं है। वैसे ही यदि कॉलेज है तो मान लीजिए उसने हंसराज ऑप्ट किया तो हंसराज को ऑप्ट करने के बाद वहां के वो सारे कोर्सेज को रैंक करे
0: जी।
1: तो ये दोनों चीजें ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू है। अब उसमें बच्चा डिसाइड कर ले कि वो कोर्स के बेसिस पे जाना चाहता है प्रेफरेंस में या फिर कॉलेज के बेसिस पे। और

0: ये चॉइस वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो इसमें बहुत ज्यादा हम सजेस्ट नहीं कर सकते हैं
1: जी, जी.
0: कितनी बार बच्चे के लोकेशंस का इश्यूज होता है, आउटसाइडर्स होते हैं, कितनी बार इंटरेस्ट का इश्यूज होता है. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक कोई सिंगल फैक्टर्स नहीं है
1: जी.
0: जिसके बेसिस पे प्रेफरेंसेस ऑप्ट किए जा सकते हैं
1: जी.
0: और कोई भी प्रेफरेंस कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती है कि सो एंड सो ने ये किया है तो सेम ऑप्शंस है जो आप ऑप्ट कर लें प्रेफरेंस में, तो ये चीजें वैरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट.
1: तो जैसे कि सर ने बताया कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मनपसंद कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, लेकिन यदि आप पर्टिकुलर कोर्स लेके चलना चाहते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक कोर्स ही करना है, तो मुझे लगता है आपको कॉलेज साइड में रखना चाहिए और आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस फिलिंग करनी चाहिए. आगे इस बारे में हम और भी बात करेंगे, लेकिन सर अभी थोड़ा सा एक समय आया है कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं और वापस आते हैं हमारे प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन में. यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम में, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें स्टूडियो में डायरेक्ट फोन कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 2342-1080 और 2342-1084. दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं वो यदि हमें कॉल करना चाहें तो 011 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा.
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा. हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
4: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा. पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए. दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है. ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं. इसीलिए हम सबको मिलकर ये संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है. तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी लें, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें. डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से.

0: जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, सीयूईटी ने भी आपके पूरे पर खोलने का मौका आपको दिया है और चाहा है कि जितनी भी प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं, जितने भी कोर्स, जितने भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स में लेना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस उन्होंने दी है। और इसीलिए सीयूईटी की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली इवनिंग से। और हमारे साथ हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हैं, लेकिन यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और आपकी कोई क्वेरी है सीयूईटी से जुड़ी हुई, तो आप हमारे साथ डायरेक्ट स्टूडियो में जुड़ सकते हैं हमारे फोन नंबर्स के द्वारा। यदि आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या जो केवल सीयूईटी स्कोर होता है वही मायने रखता है, या कैटेगरी प्रेफरेंस या सीट उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है?
1: रश्मि जी, सीयूईटी का मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एट प्रेजेंट दैट इज ओनली फैक्टर जो कि एडमिशन में आपको हेल्प करता है।
0: जी,
1: आप सीयूईटी में यदि अपेयर नहीं हुए तो यू कैन नॉट टेक द एडमिशन। सो सीयूईटी का मार्क्स बहुत ही मायने रखता है और सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे ही आपको कोई भी कॉलेज एलोकेट किया जाएगा
0: जी।
1: और उसका जो क्राइटेरिया होगा वो होगा बच्चों के अपने कोर्स प्रेफरेंस एंड कॉलेज प्रेफरेंस के बेसिस
0: जी।
1: पे
0: क्या इसमें जो 12th क्लास का जो रिजल्ट आता है, बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट, उसको भी कोई मान्यता होती है क्या? मतलब वो भी प्रेफरेंस में लिस्ट में होता है कुछ?
1: एट प्रेजेंट क्लास 12th के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है, उसके कारण आप देखेंगे कि बच्चे आजकल सीयूईटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इवन 12th के साथ ही वो सीयूईटी के प्रिपरेशन भी शुरू कर देते हैं।
0: जी जी।
1: क्योंकि उनको पता है कि यदि उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उनका सीयूईटी का ही मार्क्स केवल मायने रखता है, ना कि 12th क्लास के मार्क्स को।
0: अगर किसी छात्र को किसी मतलब पहली लिस्ट में सीट नहीं मिलती तो वो थोड़ा सा मतलब डिसहार्टेड हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिसे पहली लिस्ट में चांस नहीं मिला है?
1: रश्मि जी, सीट्स तो बहुत सारे हैं, आपको जैसा मैंने बताया कि 71,600 सीट्स हैं।
0: जी हाँ।
1: सवाल केवल यह है कि क्या आपके अपने पसंद का कोर्स और कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में आपको एडमिशन्स मिलेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं और उनके मार्क्स यदि बहुत अच्छे हैं तो दे हैव फेयर चांसेस टू गेट द एडमिशन इन द वेरी फर्स्ट लिस्ट। बट यदि आपके सीयूईटी का स्कोर काफ़ी कम है तो आपको शायद फर्स्ट लिस्ट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स चॉइस किया है।
0: जी जी जी।
1: आप कोई ऐसे कोर्स जैसे हिंदी में ले लें, संस्कृत में ले लें, तो हो सकता है कि आपको लोअर स्कोर पे भी फर्स्ट कटअप में मार्क्स एडमिशन्स मिल
0: जी,
1: जाएगा
0: जी, जी।
1: बट बहुत अच्छे कोर्सेज लाइक आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, इको में जाना चाहते हैं, इंग्लिश में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस टफ हो जाता है कि फर्स्ट कटअप में मिल जाए। मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि वो होपफुल ना, होपलेस ना हो कि उनको फर्स्ट कटअप में नहीं मिला। दिस वुड वेट टिल द लास्ट राउंड, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकेंड आता है, कितनी बार थर्ड भी आता है, और बाद में एक मिड एडमिशन भी होते हैं, उसके बाद भी मॉपअप राउंड भी चलता है यूनिवर्सिटी का।
0: ओके।
1: तो मॉपअप राउंड तो इवन लास्ट ईयर जहां तक मुझे याद है अक्टूबर नवंबर तक चला
0: जी।
1: तो आप उस केस में केवल ये होगा कि आपके कोर्सेज छूट जाएंगे, उस कॉलेज में आपके एडमिशन होती भी है तो बहुत सारे कोर्स कवर हो चुके हैं, बट हो सकता है कि आपको कोई बेटर कॉलेज मॉपअप राउंड में भी मिल जाए। तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, देर इज ए चांसेस कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा।
0: जी सर, जो एक एक्सेप्ट, अपग्रेड और फ्रीज ऑप्शंस होती हैं, ये क्या होती हैं, थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे।
1: बच्चे जब प्रेफरेंस फिलअप करते हैं कोर्सेस एंड कॉलेज का

0: और जब सीट एलोकेशन शुरू होता है तो DU के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो जहां भी फॉल करते हैं उनको कॉलेज एलोकेट कर दिया जाता है। बच्चों के पास वो ऑप्शन होता है कि कोर्स को वो एक्सेप्ट कर लें, फ्रीज कर लें या अपग्रेड कर दें।
1: जी
0: फ्रीज करने का मतलब है कि दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ द अपग्रेडेशन, वो जिस कॉलेज में है दे आर हैप्पी। मान लीजिए किसी ने हंसराज में एडमिशन लिया और कह रहे कि मैं हंसराज से मुझे किसी और कॉलेज में नहीं जाना,
1: जी
0: तो दे कैन फ्रीज दैट एडमिशन कि मुझे
1: ओके
0: और ना तो अप जाना है SRCC ना मुझे डाउन में जाना है या
1: जी
0: लोअर प्रेफरेंस पे जाना है।
1: जी
0: प्रोसेस हमेशा अपग्रेडेशन का है। तो एक फ्रीज तो ये हो गया कि आपने अपना एडमिशन फिक्स कर दिया
1: फिक्स
0: कि
1: कर
0: यहीं
1: दिया
0: रह
1: है
0: दिया।
1: जी
0: दूसरा प्रोसेस है अपग्रेड का, लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद योर द चॉइस विच द DU हैज ऑफर्ड यू, या कोर्स आपको, दोनों चीज हो सकता है, कोर्स आपको
1: जी
0: पसंद नहीं आया, कॉलेज पसंद नहीं आया,
1: जी
0: उस केस में आप उसको अपग्रेड करेंगे और अपग्रेड करने पे आपका जो नेक्स्ट कट ऑफ आएगा तो उसमें आपका जो चॉइस में बेटर कॉलेज होगा यदि वो आ रहा होगा तो आपको बेटर कॉलेज या बेटर कोर्स आपको मिल जाएगा। दिस इज व्हाट अपग्रेडेशन।
1: जी
0: तो उसके लिए आपको नेक्स्ट कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा।
1: ओके सर एक जी बताइए आप बताइए सर
0: हाँ, तो एक अपग्रेड का ऑप्शन है, एक फ्रीज का ऑप्शन है, दूसरा कितनी बार विड्रॉल्स का भी ऑप्शन है। बच्चा यदि विड्रॉ करना चाहता है पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम से तो वो वहां से भी पूरी एडमिशंस विड्रॉ कर सकता है।
1: जी
0: ये है
1: सर एक सवाल आया है पूछना चाह रहे हैं कि क्या फॉर्म एक बार भरे जाने के बाद सुधार का मौका मिलेगा?
0: इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा रश्मि जी कि बच्चे जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं उसके वेबसाइट्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, क्योंकि कितनी बार यूनिवर्सिटी, बहुत ऐसे बार डिसीजंस चेंज होते हैं और उस केस में अपग्रेडेशंस का अपडेट करने का ऑप्शंस देते हैं। तो एक तो नॉर्मल प्रोसेस है कि एक बार आपको मिलता है अपग्रेड करने का, बट सारे इन्फॉर्मेशन आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे नहीं कर सकते हैं। बट कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप लाइक जो चॉइस ऑफ कॉलेजेज है या कोर्सेज है उसके लिए कितनी बार अपडेट्स का ऑप्शन आता है, और उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि यूनिवर्सिटी की साइट्स रेगुलर चेक करते रहें
1: जी
0: टाइम टू टाइम।
1: सर एक सवाल हम तक पहुंचा है मानसी मान्या का, ये पूछ रहे हैं कि कौन से सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं जो हमें अपलोड करने होंगे, प्लीज इसके बारे में भी बताइए, और साथ साथ ECA कोटा क्या होता है वो भी बताएं।
0: डॉक्यूमेंट्स अपलोड का एक सेक्शन है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एकेडमिक सेक्शन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और बेसिक पर्सनल में भी आपको अपलोड करने। सबसे पहले तो आपको अपना एक फोटोग्राफ्स रखना है, स्कैन कॉपी, एक सिग्नेचर रखना है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करना है उसके भी आपको स्कैन कॉपी रखनी है, 12th क्लास के सर्टिफिकेट्स की पूरी स्कैन कॉपी रखनी है। बच्चों को मैं एक सजेशन देंगे कि मोबाइल से स्कैनिंग ना करें,
1: ओके
0: प्रॉपर स्कैनर यूज करें, प्रॉपर डेस्कटॉप यूज करें। कितनी बार क्या होता है कि बच्चे के मोबाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है कैमरे की और उन्होंने अपलोड कर दिया एंड दैट इज नॉट विजुअल, कि जब वो आपके एडमिशन प्रोसेस में जाता है तो कॉलेज को समझ में ही नहीं आता है कि क्या अपलोडेड है।
1: जी जी
0: उस केस में फिर क्वेरी क्रिएट हो जाती है, फिर से हमें सर्टिफिकेट्स मंगवाने पड़ते हैं। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि चाहिए। और बच्चा यदि EWS का है या OBC NCL का है तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स भी उनके पास होना चाहिए, या कोई भी कोटा उनके पास है वो सारे सर्टिफिकेट उनको स्कैन कॉपी रेडी रखने हैं, क्योंकि ये स्कैन कॉपी अपलोड होना है। एक चीज OBC और EWS के लिए बहुत जरूरी है कि 1 अप्रैल 2026 का बना हुआ होना चाहिए OBC NCL EWS, क्योंकि उसके
1: बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को जाननी बहुत जरूरी है। सर एक बार डेट फिर से बता दीजिए कब का सर्टिफिकेट ये बना होना चाहिए।
0: बेसिकली 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको वो सर्टिफिकेट्स वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज जो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, यदि बच्चा कोई पहले का बना रखा है और उसके बेसिस पे यदि अंडरटेकिंग के लिए भी टाइम मांगेगा तो यूनिवर्सिटी अब अंडरटेकिंग नहीं एक्सेप्ट करती है। तो बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी भी आप अप्लाई कर दीजिए, यदि नहीं किया है तो हो सकता है 10 दिन में आपके पास OBC का सर्टिफिकेट रेडी रहे या EWS का सर्टिफिकेट रेडी रहे। आई थिंक एक क्वेश्चन आपने और भी शायद किया था लास्ट लाइन।
1: जी सर वो ये पूछना चाहते थे कि ECA कोटा क्या
0: yes,
1: होता
0: ECA
1: है?
0: ECA कोटा ये बेसिकली लास्ट 3 इयर्स का सर्टिफिकेट्स है जो वैलिड होता है। तो अप्रैल से लेकर के मार्च से लेके अप्रैल 2026 का, अप्रैल 2023 टू दिस मार्च 2023

0: 3 अप्रैल 2026 तक की सर्टिफिकेट ही है जो केवल वैलिड है। एक्स्ट्रा कोकरिकुलर में बच्चे जो भी सर्टिफिकेट्स है उसकी भी वो सर्टिफिकेट्स है जो रेडी रखें। जनरली 5 सर्टिफिकेट्स जो बेस्ट सर्टिफिकेट्स है दे कैन अपलोड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट।
1: ओके, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स।
0: स्पोर्ट्स के भी पीरियड सेम है बट उनके सर्टिफिकेट्स केवल 3 वैलिड हैं।
1: ओके,
0: तो शायद 5 है।
1: ओके, तो आई थिंक मानसी आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। और इसके बारे में हम CUET के बारे में और भी बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। यदि आपके पास भी कोई क्वेरी है, आप हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। 0112342108 हमारा नंबर है और दूसरा नंबर है 0112342108 और यदि आप WhatsApp के माध्यम से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. प्रोग्राम चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन और आपके साथ में हूं मैं आपकी अपनी दोस्त आरजे रश्मि. और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट प्रोफेसर रजनीकांत वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो सीट मिलती है जब किसी भी स्टूडेंट को, तो वो कितने टाइम में उसका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है और कितने दिनों तक उसके पास ऑप्शन होती है कि वो फीस जमा करा सकता है?
1: रश्मि जी, जैसे यूनिवर्सिटी अपनी फर्स्ट कटअप निकालती है और उनको सीट एलोकेट करती है, तो इन जनरल 3 डेज का उनको टाइम देता है
0: जी,
1: जिसमें सारा प्रोसेस उनको कंप्लीट करना होता है. बच्चे जनरली जैसे अलॉटमेंट होती है, बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सीट को, या फिर फ्रीज कर देते हैं, या जो भी करते हैं, तो वो यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रोसेस है जो कॉलेज का है उनका नहीं है. तो बेसिकली वो बहुत पैनिक होते हैं कि हमारा एडमिशन्स का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आया. एक्चुअली वहाँ मल्टीपल लेयर्स है, 4-5 लेयर्स होते हैं जिसके थ्रू है जो उनकी सीट एक्सेप्ट की जाती है थ्रू द कॉलेज, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है
0: जी.
1: तो बच्चे पैनिक ना हो कि उन्होंने यदि फर्स्ट डे किया तो फर्स्ट डे जो उनको अप्रूवल आ जाए, हो सकता है कि वो सेकेंड डे आ जाए, थर्ड डे भी आ

0: जाए। तो उनको एक तो अपनी क्वेरी सेक्शंस देखते रहनी है कि ये कोई क्वेरी कॉलेज ने रेज तो नहीं कर दिया है, और रेज कर दिया तो इमीडिएट उस डॉक्यूमेंट्स को उनको अपलोड करना है, प्रोवाइड करना है। और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है थ्रू प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, जैसे ही अप्रूवल होती है उनको फीस पेमेंट की लिंक मिल जाती है
1: जी, जी।
0: और बच्चों को इमीडिएट फीस पेमेंट करने की जरूरत होती है
1: जी।
0: कितनी बार बच्चे जो फीस है टाइमली नहीं पे कर पाते हैं जिसके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, और कितनी बार यूनिवर्सिटी की भी मान लीजिए टेक्निकल क्लिच है कोई
1: जी।
0: तो उस केस में जो थोड़ा सा टाइम पीरियड भी बढ़ता है, कितनी बार बढ़ाया जाता है, 4 आवर्स 5 आवर्स इस तरीके से टाइम पीरियड भी फीस के लिए बढ़ जाते हैं। तो उनको हमेशा यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस चेक करते रहने हैं। जैसे ही यूनिवर्सिटी का वो फीस पे करते हैं उनकी एडमिशन्स कन्फर्म हो जाती है, बट वो एडमिशन भी प्रोविजनल होती है क्योंकि बाद में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस फिर से होते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशंस, और उसमें यदि कोई भी फ्लॉ पाई जाती है तो उनके एडमिशंस है जो कैंसिल हो जाते हैं। सो जनरली ये 3 डेज का प्रोसेस है जिसमें उनके सीट भी एलोकेट हो जाती है, एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, एडमिशन प्रोसेस में उनकी फीस भी जमा हो जाती है, और यदि सब कुछ सही है तो आप मान के चलिए कि उनकी एडमिशन है जो कन्फर्म हो जाती है
1: जी। सर एक सवाल आया है, ऋषिका लिख रही हैं, इनका कहना है इनके 466.7 मार्क्स है फॉर 5 सब्जेक्ट में, तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इन्हें CUSB में एडमिशन मिल सकता है, BSc बायोटेक ही करना चाहती हैं और ये OBC NCL कैंडिडेट हैं।
0: ऋषिका मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा कि सोशल नेटवर्क साइट पे बहुत सारे एप्स हैं या पब्लिसिटी होते रहते हैं, आप उनमें प्रिडिक्टर्स की एक ऑप्शंस होते हैं
1: जी,
0: तो आप उनके प्रिडिक्टर्स में अपने एप्लीकेशंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और जो भी कोर्स ऑप्शन आपने प्रेफरेंसेस मांगा है उसको भर दीजिए, और जो आपके स्कोर हैं CUSB के उसको डाल के देख लीजिए, उससे आपको प्रोबेबल जो कोर्सेस हैं वो अवेलेबल है या नहीं है वो आपको वहाँ से पता लग जाए पाएगा। मैं DU पे तो कमेंट कर सकता हूँ, शायद CUSB के बारे में बहुत ज़्यादा आपको कमेंट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट या सजेस्ट करूँगा कि आप प्रेडिक्टर्स देखें सोशल नेटवर्क साइट पे और वहाँ से आइडिया लें, या फिर अपने किसी सीनियर से या उस कॉलेज के स्टूडेंट से आइडिया लें कि वहाँ एडमिशन आपको ये स्कोर लो है तो थोड़े से चांसेस मुझे कम लगता है कि मिलेगा, बट होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आप प्रेडिक्टर्स यूज करें या किसी सीनियर को कंसल्ट करें
1: जी। सर स्पॉट राउंड क्या होता है और इनमें किन छात्रों को मौका मिलता है?
0: स्पॉट राउंड बेसिकली लास्ट राउंड है जिनके एडमिशंस कहीं नहीं हुए हैं और या फिर कोई विड्रॉ कर लिया है
1: जी।
0: उसमें मॉप अप राउंड में एक लास्ट चॉइस मिलती है, बट इट्स ए रिस्की गेम क्योंकि आप यदि ये सोच रहे हैं कि मुझे इस कॉलेज में स्पॉट राउंड में मिल जाएगा तो शायद नहीं भी मिलेगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्सेज एंड द कॉलेजेस। यदि वो अवेलेबल है वहाँ पे कुछ सीट्स तो फिर शायद मिलने के चांसेस होते हैं, बट रिमेंबर मॉप अप राउंड में काफ़ी रश होती है और वो एक काइंड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होती है
1: जी।
0: तो वहाँ पे काउंसलिंग होती है और वो यूनिवर्सिटी से ही होता है, तो वहाँ पे आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, टाइमली जाना पड़ेगा, आपको फिजिकली अवेलेबल होना होगा, जैसे बाकी जो कटअप्स हैं उसमें आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, बट मॉप अप राउंड में आपको फिजिकली वहां पे अवेलेबल होना पड़ेगा
1: जी।
0: और मॉप अप एंड स्पॉट राउंड्स में आपके वहां से एडमिशंस मिल जाते हैं, कितनी बार आपको अच्छे कॉलेज भी मिल जाते हैं यदि बाई चांस कोई सीट वहां खाली रह गया तो
1: जी। सर जिन्हें ऑलरेडी सीट अलॉटेड है, बहुत से स्टूडेंट्स में ये क्वेरी होती है, कन्फ्यूजन होती है कि हमें तो सीट ऑलरेडी मिल गई है लेकिन उसके बावजूद हमें स्पॉट राउंड में जाना है, तो क्या उनके लिए कोई बेनिफिट है ये स्पॉट राउंड कि उन्हें अपनी मनपसंद सीट के लिए वो फिर से स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं यदि उन्हें ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी है?
0: रश्मि जी मैंने अभी आपसे यही बताया, शेयर किया कि स्पॉट राउंड उन बच्चों के लिए है जिनकी एडमिशंस कहीं नहीं है, यदि उनकी एडमिशंस ऑलरेडी कंफर्म्ड है सो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मॉप अप एंड स्पॉट राउंड उस, और ये बहुत ही रिस्की गेम है कि आपको कोई कॉलेज चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, उसके लिए आप एडमिशंस ना लें और वेट करते रहे, ये बाई चांस वाली बात है और रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड है
1: जी।
0: कितनी बार एक दो बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे ने अपना एडमिशंस विड्रॉ कर लिया, कैंसिल करा लिया, बाद में फिर वो मॉप अप राउंड में है जो शायद उसको उससे बेटर कॉलेज मिल गया
1: जी।
0: बट मैं
1: लेकिन मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके साथ अपोजिट हो जाता होगा कि वो स्पॉट राउंड में जाने के लिए अपनी सीट विड्रॉ कर देते हैं बट उन्हें बाद में भी कोई मनपसंद कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता।
0: यस अच्छे कॉलेज अच्छे स्कोर पे मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि स्पॉट राउंड का किसी को वेट करना चाहिए
1: जी।

0: उनको एडमिशन्स ले लेना चाहिए जहाँ भी है, और एडमिशन सिक्योर्ड कर लेना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो यूनिवर्सिटी सबकी सेम है, कॉलेजेस कोई भी हो डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलना है, तो बहुत फंसी होने की जरूरत नहीं है कि मुझे वही कॉलेज चाहिए। हाँ, कोर्स पे यू कैन कम्प्रोमाइज।
1: जी जी सर, एक छोटा सा सवाल मन में और आ रहा है, हालांकि आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बातें ज़्यादा कर रहे हैं इसके, लेकिन इसके साथ साथ जैसे BHU, JNU और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज CUET स्कोर के बेस पर एडमिशन्स लेती हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है एडमिशन्स में? बस एक, चूँकि वक्त बहुत थोड़ा सा बचा, एक छोटा सा डिफरेंस जो स्टूडेंट्स के बीच में क्वेरी है वो मैं जानना चाहती थी।
0: बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो CUET की तरह के थ्रू एडमिशन्स लेते हैं, बट उनका प्रोसेस है जो डिफरेंट है। DU के प्रोसेस अलग हैं, JNU का प्रोसेस अलग है, जामिया का अलग है
1: जी।
0: तो बच्चों को उस यूनिवर्सिटी की साइट्स को देखना है। लाइक JNU का जहाँ तक मुझे पता है वो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं।
1: ओके।
0: बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैंने सुना कि वहाँ पे सारे बच्चों से पहले फीस ले लिया जाता है और बच्चों को है जो अलॉट कर दिया जाता है, और उसके बाद जो जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो जाती है एडमिशन ले लेते हैं उनकी फीस चली जाती है, और फिर वो जिनके नहीं होते उनके फीस रिफंड हो जाते हैं
1: जी।
0: तो ये करना मुश्किल है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस एक होगा, तो उनको उस कॉलेज इस यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स को चेक करना होगा और उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। कुछ DU के पैटर्न्स पे चलते हैं और कुछ का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है।
1: जी, तो सर क्योंकि वक्त अब बहुत थोड़ा सा बचा है तो मैं ये चाहूँगी कि आप चलते चलते जो आज हम बात कर रहे हैं CUET काउंसलिंग के बारे में, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि उन्हें उनके मनपसंद कॉलेज में, नहीं तो मनपसंद कोर्स में, एक अच्छी जगह अपने स्कोर के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया कोर्स में उन्हें एडमिशन मिल सके, उसके बारे में क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
0: मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि यदि CUET में आपके लो मार्क्स भी हैं तो आप होपलेस ना हैं, हो सकता है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे कोर्सेज में भी एडमिशन्स मिल सकता है। बच्चे जब चॉइस करें तो एटलीस्ट 20 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जहां पे उनकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती हो और CUET के मार्क्स देखने हैं, और यूनिवर्सिटी का बहुत सारा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड है, प्राइवेट है, स्टेट है, वो सारा उसमें से चूज कर लें, और हर यूनिवर्सिटी का वो लास्ट राउंड तक वेट करें। ऐसा नहीं है कि वो बीच में होपलेस हो जाएं और फिर वो देखना बंद कर दें और उनके चांसेस आ भी गए और निकल भी गए और उनको पता भी ना लगे। और दूसरा कि हर यूनिवर्सिटीज अपने अपने काउंसलिंग प्रोसेस को एडवर्टाइज कर रही होती, अपनी वेबसाइट पे डाल रही होती या फिर थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया है जो अपडेट्स डाल रहे होते
1: जी।
0: तो बच्चों को चाहिए कि उनके काउंसलिंग शेड्यूल्स एंड प्रोसेस को हमेशा चेक करते रहें और उनको सुने। और दूसरा कि यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनके NIRF रैंकिंग्स देखें कि किस टाइप्स की रैंकिंग्स हैं, और हर कॉलेज का एक अपना यूनिक फीचर है, किसी की सोसाइटीज बहुत अच्छी है, किसी का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, तो कॉलेज को उस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर लें। और कुछ चीज़ें मैं और भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि हर यूनिवर्सिटीज के अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन हैं, उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसको प्रॉपरली है जो चेक करते रहें। जब भी वो फिलअप करें फॉर्म्स को तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के थ्रू करें, मोबाइल को यूज ना करें। जब वो पेमेंट्स करें तो वो अपने कार्ड से करें, ना कि किसी साइबर कैफे या किसी और के अकाउंट से करें, क्योंकि यदि आपकी एडमिशन्स कैंसिल होती है तो पैसा वहीं रिफंड होना
1: बिल्कुल है। ये बहुत एक जरूरी टिप है स्टूडेंट्स के लिए।
0: उसके अलावा मैं कहूंगा कि जो यूजर ID एंड पासवर्ड आप बनाते हैं या मोबाइल नंबर डालते हैं, कितनी बार हमने ऐसे रिपोर्टिंग्स देखे हैं कि बच्चे का फॉर्म है जो कोई साइबर कैफे वाले ने फिलअप किया है, उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है या मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, तो वो चीज है जो फिर बहुत ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और उस केस में स्टूडेंट्स बहुत बॉदर होते हैं। OBC सर्टिफिकेट का आपको मैंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज के फी स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं, आप उनके कॉलेज के वेबसाइट्स पे जाकर के देखिए। कुछ कॉलेज जो फी वेबर्स का भी ऑप्शंस रखते हैं उनको जाकर के आप देखिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है जो स्कैंड कॉपी रखिए एंड लास्ट तक आप वेट नहीं कीजिए। और जब आप प्रेफरेंस फिलअप करते हैं तो एक मेरा सजेशन है कि बहुत लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत है आपकी, यदि बहुत अच्छी CUET की स्कोर नहीं है तो टाइम टू टाइम आप उसको सेव करते रहिए और जो लास्ट में सेव होगा दैट इज द फाइनल वन। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी, तो सर ने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और आई होप कि जो

0: तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आपने हमारे लिसनर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इतने इम्पोर्टेंट टिप्स दिए।
1: थैंक यू रश्मि जी, एंड थैंक यू टू द एफएम रेनबो, एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस।
0: थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ रश्मि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल दिल से दिल तक प्रोग्राम आशियाना के साथ, मैं कंचन। आशियाना जिसमें बात आज होती है महिलाओं की, हमारे होम मेकर की, जो इतने प्यार से घर को सजाती है, संवारती हैं, दुलारती हैं और हमारे घर में आती है उनकी वजह से रौनक। प्रोग्राम आशियाना के साथ मैं कंचन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने बुज़ुर्गों के साथ स्वस्थ होंगे, अपने बच्चों के साथ गर्मी छुट्टी के लास्ट फेज़ का आनंद ले रहे होंगे और दिल से जुड़े होंगे FM रेनबो के साथ।

जो हमारे आशियाने को संवारती हैं, सबका इतना अधिक ख्याल रखती हैं, हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी बहन, हमारी होम मेकर, उन्हें भी तो चाहिए सुकून, थोड़ा सा आराम। सबका ध्यान रखते हुए वो अपनी फिक्र ही नहीं कर पाती, बिल्कुल नहीं हो पाता आराम, और सुकून तो चाहिए उन्हें। और जब इस दोपहरी में एफएम रेनबो उनके साथ है, तो प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनते हुए सुकून तो चाहिए। बिल्कुल, आप जुड़े हैं एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

याद ही ना कब फुर्सत मिली थी और कब चैन से सोई थी आप या अपने शौक से जुड़ी। सुबह से देर रात तक वो सिर्फ एक मशीन की तरह काम काम काम, बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी शिकन के, और फिर अपना भी ध्यान नहीं रख पाती। याद नहीं कि कब वो चैन से बहुत ही अपने लिए एक कप चाय लेकर खिड़की के बाहर निहारती हुई प्रकृति को देख पाई थी। है ना, प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन। और एक रिसर्च में ये पाया गया है कि नींद जैसी कुदरती नेमत भी महिलाओं के हिस्से में बहुत कम आती है, लेकिन नींद, सुकून की नींद क्यों ज़रूरी है महिलाओं के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही मीठे मीठे गीतों के साथ FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

हमारी जो होम मेकर होती है, हमारी महिलाओं की भी तो यही इच्छा होती है कि कोई उनसे पूछे कि तुम कैसी हो, आपने आराम किया या नहीं, या थोड़ा सा आराम कर लो, हम बच्चे को संभाल लेते हैं, है ना, यही इच्छा होती है। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं के हिस्से जो नींद है ना, बहुत कम आ पाती है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ रही है। और महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, घर परिवार के सभी सदस्यों का वो ख्याल रखती हैं, घर के काज, बाहर के कामकाज, और इन सब के बीच में वो अपनी नींद तक को बहुत ही लापरवाही से लेती हैं। नींद जो है उन्हें एक वो झपकियों में नींद देती है, कभी दिन में थोड़ी देर के लिए सो गई, लेकिन ये नींद पर्याप्त नहीं है, और इसकी वजह से दिल की बीमारियों से वो जूझ रही हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता, और इसकी वजह से वो चिड़चिड़ी रहती हैं, मूड स्विंग्स की शिकार होती हैं, और जब नींद पूरी नहीं होती है,

तो कल्पना कीजिए कि किसी को कैसा लग सकता है। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, मैं आपके साथ कंचन। सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक बहुत ही प्यारे प्यारे गीत।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
2: जी,
3: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
3: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
3: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
3: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि

0: कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है, यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी,
1: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,

0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए

0: कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोता, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
5: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
3: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
6: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ
7: गाओ। कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
7: क्या क्या
9: क्या, क्या?
6: ऊंचा सब तक कोयल गाए, नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
4: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
8: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू,
9: हईशा।
6: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम काम। ये रहा पपीहा।

0: купа! Дека дал пулакар купа! Гау, гау, гау! Аре, папи хе! Эсе кьо бэта хе, бхайе? Сара джангал джум раха хе? Аре, ту кэса дух мана раха хе? Гау, гау, гау!
1: Танг мат кар ту мужко кауве! Ja, ja, ja. मुझसे बतियाने से पहले अरे तू मुंह तो धोकर आ
0: काव काव काव मुंह भी धोकर आऊंगा मैं पानी भी पीऊंगा जी भर सबके संग मिलता लखोदने मैं भी मदद करूंगा डटकर अरे पपी है अरे पपी है तुम भी चलो कुछ मदद करो
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब अरे वाह जनाब ताल के अंदर मिट्टी होगी पानी भी गंदा ही होगा छी छी कौन पिएगा उसको अरे काले कौवे मुझको बख्शो
0: का का का
2: कौवा मदद मांगने आया पपीहे ने डांट कर उसे भगाया रिमछिम बरखा आई पपीहे ने झूम कर गाया

0: पपी हना पिए जवान
1: काँ, काँ, काँ। अरे इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ, भौ, भौ। अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ, भौ। कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ। शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
6: और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे

0: यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना?
1: भाई मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
2: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
1: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
0: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए? क्या मैंने गलत कहा?
2: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
0: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
1: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की,
2: काँव काँव। हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है?
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा।

0: पानी।
1: क्या ये मर गया?
2: क्या पता,
1: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
2: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ ये ठीक रहेगा।
2: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
3: पानी।
2: अरे
1: पपी है भाई।

वे रास्ता बिया हुई ना तकिया दे रास्ता बना काम जल्दी शुरू करो ले विश्वास दिया पिछे दे पुस्ती जुरिस्टिक्शन भीतर दे सरकार रजिस्टर्ड करी बिरावली रुकावा तकियोले तकिया वापस लुशे अजय कोहिमा डिप्टी कमिश्नर बी हेनोक पुचेम्बरा चेयर कुरीगिना बी डब्ल्यू डी एन एच ऑफिशियल्स कंट्रैक्टर एम एस नितिन साई कंस्ट्रक्शन लगा रिप्रेजेंटेटिव्स और एम वी वाई ओ लगा मेम्बर्स खान भाग लुगिना एक कंसल्टेटिव मीटिंग दे इतु फैसला लुशे इतु मीटिंग लॉ हमोय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ पी डब्ल्यू डी एन एच बरा कोपर जुनाइशे की माटी सिंक कुरी तकिया रास्ता दी रिपेयर कुरिया काम कारण वर्क ऑर्डर अजी इश्यू करूब पाबना आसे कंट्रैक्टर्स खान बरा जुलाई टू दे मेटेरियल्स आनिया शुरू हम और रिपेयर कुरिया काम हुए जुलाई सिक्स दे शुरू कर और फैसला लुशे की डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और एम वी वाई ओ बरा इतु काम ठीक समय खत्म हमले कारण एक लोगे इतु काम लगा तैराखी सब और मौसम दे नागालैंड हुए सब डिस्ट्रिक्स दे हफ्ता पूरा पानी गिरे एक्सपीरियंस करे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हिसाब इतु पानी गिरे हुए आंधी तूफान और पिछली मारिकिना पे डिपार्टमेंट बारा कैसे अहियाकाली कोहिमा जेनपटो और मुकुकचोंग लगा कोनोबा जगह दे बेसि पानी गिर पे और कबरसिज दे दोबारा हेडलाइंस सुनाई दी सुबेदार हुकादो हतोजे सेमा आदि विशिष्ट सेवा मेडल पासे चीफ मिनिस्टर निफिरियो बरा कंग्रेचुलेशन जुनाइे हेल्थ मिनिस्टर पी पाइवान कन्या नागालैंड लगा हेल्थ केयर सिस्टम अपग्रेड कर कारण सेंट्रल लगा सपोर्ट मानिसे नागालैंड अहियाकाली बा सेंसस 2027 कारण हाउस लिस्टिंग अपरेशन शुरू हम और नागालैंड हफ्ता पूरा सब जगह पानी गिर कारण तैयार कर আৰু আজি ৰাতি লগা নাগামিজ কপৰ ইমান ডিষ্টিছ হৈ আছে শুনি থাকিবি আহিয়াকালি পূজাৰ 7:25 মিনিটে নাগামিজ কপৰ আনি দিব

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई ईओसीआई व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
4: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में

0: अख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू

0: चंद भैरव फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day.

0: Swagar Health Center ste BP laga free check up treatment aro kal phal thakibo laga motop di ase BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-1166-66 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
0: itu jankari NTEP bra di ase
2: हेलो
3: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
5: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
2: सर इतने कहाँ से
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
4: अरे
2: काट दिया
6: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
2: फ्रॉड
6: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए
9: Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
10: Department of Cooperation, Government of Nagaland para Cooperative Week 2026, June 29 para July 6 tak manaya se. Itu national campaign sahakar se samridhi te bhag lobi. Hafta bhor hobole laga awareness camps, cleanliness drive aur naujawan khan karune bishi bhal activities khan te bhag lobi. Cooperative Week 2026, Ministry of Cooperation laga 5 sal pura hua manaya se. Department of Cooperation, Government of Nagaland para janaya se.
11: WFM Tracker Band
12: 103 MHz
11: News, Music and Entertainment
12: This is FM Tracker Band
11: FM 103 MHz
13: Good evening listeners, Sito Akashwani Kohima FM Tracker Band 103 MHz Prapniyan program huni ase Aru ite ako huni hobo Hindi film gaan program Duets and Chorus So, RJ Jacob, apni han sab ke welcome kuriya se, swagat kuriya se, namaste aru salam kuriya janai diya se. Apni khan laga feedback, suggestions, naole thoughts taksi kule, itu number likhiyo pare, 9436805333. Likhiyo kane quota se, FM space F. Well, listeners kan program suru kuri diya se, pula git huni wa aplon loke Jonita Gandhi aru Amit Mishra laga waste, film ase Dishum.

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंटों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।

0: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको

एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।